0: चैटिंग नहीं किया है।
1: अपन बोला तुम लैला, वो बोली देखता है साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है उसको झूठ काहे को लगता है यार।

सूरज मरदा मरदा ते जग मरदा ए हवा मरदी सूरज मरदा मरदा ते जग मरदा वे जे कसमा खाना मरदा कोई फिर सब तो पहला रब मरदा फिर सब तो पहला रब

पता चल गया कौन सा नशा करता है, वो नए नए फूलों से मजा करता है। ये कैसा बंदा भेजा तूने दुनिया में खुदा, ऐसी गलती थोड़ी ना खुदा करता है।

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।